तेरे अनेक, तेरे अनेक पढ़ें बहु सिमरत शास्त्र जी, कर क्रिया खाट कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो भावें मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जेवड़ अवर ना कोई, तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू निहचल करता सोई, तुद आपे भावे सोई वरतै जी, तू आपे करह सो होई, तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सब सह का जानोई। आसा महला चौथा, तू करता सच्यार मेंडा साई, जो तो भावे सोई थीसी, जो तू दे सोई हो पाई रहाओ, सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनों कृपा करह तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मनमुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया, तू दरियाऊ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे, जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल, जिसनो तू जानाए सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाण, जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर न कोए, तू कर कर वेखें जानें सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट हुए। आसा महला पहला, तित सरवरण पहिले निवासा, पानी पावक तिनह किया,

जहां के मां तहां आप, जुगो जुग टल चवर शतर तख्त दे मालक, हाजरा हजूर जारा जहूर शब्द गुरु, बाणी के बोहे थमरत के दाते, दसा पातशाहियां दी जोत, सहब सचे पातशाह गुरु गरीब नवाज, धन धन धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज, तिन्हां दी पावन पवित्र ते मुकद्दस हजूरी विच शामा वेले दे सजे दवाना दियां हाजरियां भर रहे अति सत्कार योग सन्मान योग सतसंगी जनों, सतगुरां ने बड़ी अपार बख्शिश रहमत कीती है आप सब सजे दवाना दियां हाजरियां भरदियां, मेरे तो पहला गुरु घर के रागी सिंघां पासों सतगुर की अमृतमई बाणी दे कीर्तन सरवण कर रहे सी। बड़ा प्यारा शब्द गुरु नानक साहब जी का वो आप जी दे नाल सांझा करके गए ने, जिदे बोल सन गल्ली असी चंगियां आचारी।

सुख कोए न जाने तुमरा अंत उचे ते ऊचा सगल समगरी तुमरे सूत्र तारी तुम ते हो सो तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास बोलना जी सतनाम वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरों श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे सब दुख जाय तेग बहादुर सिमर घर नौ निदयावे ताए सब थाई हुए सहाय

हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो श्री ननकाणा साहिब होर गुरुद्वारियां गुरुधामां।

दर्शन परसें गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी, तनासरी महला पंजवां। तुम दाते ठाकुर प्रतपालक, नायक खसम हमारे। निमख निमख तुम ही प्रतपालो, हम बारक तुमरे तारे। जेहवा एक कवन गुण कहिए, बेशुमार बेअंत स्वामी, तेरो अंत ना किन्ही लहिए। जेहवा एक कवन गुण कहिए, बेशुमार बेअंत स्वामी, तेरो अंत ना किन्ही लहिए। रहाओ कोट पराध हमारे खंडो, अनक विधि समझावो। हमें अज्ञान अल्प मत थोरी, तुम्हें आपन बिरद रखावो। तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सजन सुहेले।

तुमरे गात मैत नानक दास। बोलो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। वाहिगुरु जी क्यों ओंकार, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भौत जी सहाय वार, श्री भौत जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरक है। गुरु नानक लई ध्याए फिरंगत गुर ते अमरदास, रामदास हई सहाय अर्जन हर गोबिंदो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिर सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरया कर नौंदे आवे ताए, सब थाई हई सहाय दसवें पातशाह। तन तन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, ओ सब थाई हई सहाय। दसों पातशाहियों की जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे पवित्र पाठ दीदार दा ध्यान तर खालस। बोलो जी वाह। पंजा प्यारियां चौं सब जातियां चालियां मुक्तियां अठियां जपियां तपियां शहीद सिंघां सिंघणियां जिन नाम जपया वंड छकिया देख चलाई तेग वाई देख लटकीता तिना गुरमों प्यारियां सच्चारियां दी कमाई दा ध्यान तर खालस। बोलो जी वाह। जिन्हां सिंघां सिंघणियां धर्मे सी दिते बांध बांध कटवाए चरखड़ियां ते चढ़े आरिया नाल तन चरवाए उबलदियां देगां विच उबाले के खोपरियां लोहाइयां गुरुद्वारियां दी सेवा संभाल ले कुरबानियां कीतियां तेरे भाणे नूं मिठा करके मन्निया असहे ते गए असहार दे शीदो सिकिद के सांसवासां संग नभाए धर्म निहारिया तिन्हां समूह शहीद सिंघां सिंघणियां दी कमाई दा ध्यान तर खालस। बोलो जी वाह। पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारिया जी का ध्यान तर खालस। बोलो जी वाह। प्रथम खालसे जी की अरदास है जी सरबत खालसे जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावे चेतावन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रिछरिया देह ते फतेह बिरद की पैज पंथ के जी श्री साहिब जी सहाय खालस जी के बोल वाले खालस। बोलो जी वाह। सिखा नू सिखी दान केस दान रह दान विवेक दान वसाह दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी के इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार खालस जी के बोल वाले खालस। बोलो जी वाह। सिखा दा मन नीवा मत उची मत राखे आप काल प्रखंतर जामे गुरु गरीब निवास जी पातशाह पंथ दे सदा सहाज दर पिता जी हो श्री ननकाणा साहिब गुरुद्वारे गुरुधामा तो जिन्हों तो पंथ नूं छोड़िया गया सेवा संभाल अपने खालसा जी नूं बख्शो जी। नमाण्या दे माण नताण्या दे ताण ने उट्टियां दी उण आसरे दे आसरे धान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पातशाह जी आप दे पार बख्श रहमत कृपा दा सिखा अमृत ले सजी दीवाना विच आप दी लाही बाण दे पाठ उपरंत श्री आस सजी गवाज कीर्तन जी भोग जी की अरदास। पुल जो माफ करने सिख पढ़ते सुनते सरबत लाहेवंद होमन सरबत संगतां दी हाजरी तेल फूल भेटावां अपने दर ते प्रवान करनियां दरों करों सिखी सिद्ध भरोसा नामदान बख्शना परिवारां विच सुख वरतौणा अमृत जागणे नेत्रम करदे बल बाणी ते बाणी नाल प्यार गुरु ग्रंथ ते गुरु पंथ की सेवा करना इसे तरह उदम बल बख्शिश करते रहना पंथ के सिर ते मेहर भरिया हाथ रखना पवित्र हजूरी विच कड़ा प्रसाद देगा हाजरा दार प्रवान होवे परवान दे संद वरताउण दी आग्या बख्शो मेहर करो पवित्र हुक्मनामा बख्श के निहाल करो जी सही गुरमु प्यारे मिलो जिन्हां मिलिया तेरे नाम चेतावे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोरा गया भई अकाल की साहब सिखन का हुक्म है गुरु ग्रंथ जी मान्यो जो प्रभ को मिल बोचा है राज करेगा खालसा खुआ
ਪਿਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ।

सतगुरु जी कृपा करन। तरस करके सतगुरु जी मेहर रहमत बख्शिश करके अपने नाम दा किनका मात्र साड़ी झोली विच पा देन। भई प्राप्त मानुख दे हरिया गोबिंद मिलन की एह तेरी मरिया। साडा जिहड़ा जन्म है ना गुरु प्यारी साध संगत जी सफला हो सके। गुरबाणी कीर्तन नीतनी सेवा प्रमाण अगलेरा प्रोग्राम साडे सतकार जो ग्यानी भाई गुरशरण सिंह तिना पासों सलों करिए। होइया भुलां दी खिमा लवाओ हाजरी आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की।

जुगो जुग टल, चवर छतर तख्त दे मालक, हाजरा हजूर जारा जहूर शब्द गुरु। बाणी के बोहे थमरत के दाते, दसा पातशाहियां दी जोत। साहब सच्चे पातशाह सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तिन्हां दी पावन पवित्र ते मुकद्दस हजूरी विच अमृत वेले तों सज्जे दीवाना दियां हाजरियां भर रहे सन्मान योग सत्कार योग सतसंगी जनों, सतगुरां ने बड़ी अपार बख्शिश रहमत कीती है आप सब। गुरदेव की पावन हजूरी विच जुड़ बैठ के सतगुरु की अमृतमयी बाणी दे कीर्तन मेरे तों पहलां गुरु करके रागी जथे पासों सरवण कर रहे सी। तो आओ साध संगत, समा है लड़ीवार चल रही गुरु ग्रंथ साहिब दी पावन बाणी दी कथा विचार दा। तो जिन्हें शरीर आप सतगुरां दे हजूर बैठे हो जां घरां विच मीडिया दे माध्यम राही सरवण कर रहे हो, आपस विच फतेह दी सांझ पाइए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी ने वार वार मनुखी हंकार होमे गर्भ की गल की है। तो महाराज वार वार सानू समझाते ने भी होमे बुरी होंगी है, गर्भ बुरा होंगे है, हंकार माड़ी चीज है। जिंदगी विच बंदे नू किसी भी चीज की कोई होमे हंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज उदा ज्यों दी त्यों नहीं रही। हर चीज बदलती है, समा बदलता है, बंदे का शरीर बदलता है, शरीर दियां लोड़ां बदलदियां ने। जे धुप है छां है, छां है धुप आउंदी है। इस करके कोई चीज स्थिर नहीं है कि जिहदा बंदा हंकार कर सके, हौमे कर सके। तो गुरुदेव महाराज कहिंदे ने हंकारी बंदा कदी सुखी नहीं हो सकता, वो अपने हंकार द्वारा तबाह हो जाता है, रुल जाता है। सुखमणी साहब का एक प्रचलित श्लोक है जिन्हों आप पढ़ते हाँ कि सुखी बसै मसकीनिया आप निवार तले। बड़े बड़े हंकारिया नानक गर्भ गले। कि जे बंदा हंकार करेगा तो वह हंकार उन्होंने गाल देगा, वो आत्मक जीवन नूं तबाह कर देगा। इस करके रब्बी इबादत दे राह उत्ते भी हंकार माड़ा है। घरां परिवारां रिश्तेदारां साख संबंधियां समाजिक जीवन विच भी किसी चीज़ का हंकार बंदे नूं करना नहीं चाहिए। तो महाराज सतगुरु बख्शिश करदे आ वाक रखते ने भी जिवें सूरज फिरदा है, छां बदल जाती है। जिहड़ी चीज़ का तुसी अज हंकार करदे हो कल नूं हो सकदा है कि वह चीज़ उत्थे ना रहे, बल्कि ये सच्चाई है, अटल नियम है कुदरत का। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी विच जिहड़ी कूड़ की कंध का जिक्र है वह भी बंदे दे अहंकार की गल ही है, हौमे की गल है। तो महाराज कहिंदे ने तू किहड़ी चीज़ का अहंकार करदा, इस तन का कि धन का? तन का अहंकार भी माड़ा है, क्योंकि शरीर सदा इदां दे नहीं रहिंदे। जिहड़े कल तक जवानी विच सी, जिन्हां ने कदी डौलियां उत्ते मोरनियां पाईयां होईयां सी, वह भी हुण चिड़ियां बन के रह गईयां ने। शरीर दे अंग पैर ढिले पै गए, मास

को दुख अगला मनमुख बूझ न होए, सुख दुख सम कर जानिए, शब्द भेत सुख होए, वेद पकारे वाचिया, बाणी ब्रह्म ब्यास, मुन जन सेवक साधका, नाम रते गुणतास, सच रते से जिन गए, हो सद बलिहारे जास, चौ जुग मैले मल परे, जिन मुख नाम न होए, भक्ति पाए विहूनिया, मोह काला पत खोए, जिन्नी नाम विसारिया, अवगन मुठी रोए, खोजत खोजत पाया, दर कल मिले मिलाए, आप पछाने घर वसे, होमे तृष्णा अंजाए, नानक निर्मल उजले, जो राते हर नाए, श्री राग महला पहला, सुन मन भूले बावरे, गुर की चरनी लाग, हर जप नाम त्याए तू, तू जम डर पे दुख भाग, दुख कनु दुहागनी, क्यों थिर रहे सुहाग, पाई रे अवर नहीं मैं थाऊं, मैं ता नाम निदान है, गुर दिया बल जाओ राओ, गुरमत पत सिबास तेस, तिसके संग मिलाओ, तिस बिन कड़ी न जीवो, बिन नामे मर जाओ, मैं अंदले नाम न विसरे, टेक टिकी कर जाओ, गुरु जिन्ना का अंदला, चेले ना ही टाओ, बिन सतगुरु नाओ न पाई है, बिन नामे क्या सुवाओ, आए गया पछतावना, जो सुन्ये कर काओ, बिन नामे दुख दुहरी, जो कल्लर की पीत, तब लग महल न पाई है, जब लग साच नचीत, चबदर पे कर पाई है, निर्बानी पतनीत, हो गुर पुछो अपने, गुर पूछकार कमाओ, शब्द सलाही मन वसै, हो में दुख जल जाओ, सहजे हुए मिलावड़ा, साचे साच मिलाओ, शब्दर ते से निर्मल है, तज काम क्रोध अहंकार, नाम सलाहन साध सदा, हर राखे उरतार, सो क्यों मनो वसारी है, सब जिया का आधार, शब्द मरे सो मर रहे, फिर मरे न दूजी वार, शब्दे ही ते पाई है, हर नामे लगे प्यार, बिन शब्दे जग भूला फिरे, मर जन्मे वारू वार, सब सलाई आपको, वड्डो वडेरी होए, गुरबिन आप नचीनिया, कहे सुने क्या होए, नानक शब्द पछाणिया, होमे करे न कोए, श्री राग महला पहला, बिन पिर तन सिंगारी है, जोबन बाद खुआर, ना माने सुख छेजड़ी, बिन पिर बाद सिंगार, दुख कनो दुहागनी, ना कर छेज पतार, मन रे राम जपो सुख होई, बिन गुर प्रेम न पाई है, शब्द मिले रंग होए राओ, गुर सेवा सुख पाई है, हर वर सहज सिंगार, सच माने पिर सेजड़ी, गूढ़ा हित प्यार, गुरमुख जान संजानी है, गुर मेली गुण चार, सच मिलो वर कामनी, पिर मोही रंग लाए, मन तन सच विगसिया, कीमत कह न जाए, हर वर कर सुहागनी, निर्मल साचे नाए, मन में मनुआ जे मरे, ता पेरावे नार, एकत तागे रल मिले, गल मोतियन का हार, संत सभा सुख उपजे, गुरमुख नाम आधार, खिन में उपजे खिन खपे, खिन आवे खिन जाए, शब्द पछाने रव रह, ना तिस काल संताए, साहेब अतोल न तोलिया, कथन न पाया जाए, वपारी वन जारिया आए, वंजो लखाए, कार कमावे सच की, लाहा मिले रजाए, पूंजी साची गुरु मिले, ना तिस तिल न तमाए, गुरमुख तोल तलाए सी,

है कप्पा कापड़ रूप सिंगार, खेहू खेर लाई है छोड़ चले घर बार, मैर मलूक कहाई है राजा राव के खान, चौधरी राव सदाई है जल बलिए अभिमान, मनमुख नाम विसारिया जो डबद दा कान, होमे कर कर जाए सी जो आया जग माए, सब जग काजल कोठड़ी तन मन दे सो आए, गोर राखे से निर्मले शब्द नवारी पाए, नानक तरिए सच नाम सिरसा हाँ पत साओ, मैं हर नाम न विसरे हर नाम रतन वे साओ, मनमुख भौजल पचमुए गुरमुख तरे अथाह, श्री राग महला पहला कर दूजा मुकाम कर कर बैसना, नित चलने की धूख मकाम ता पिर पाई है, मकाम ता पिर जानी है जा रहे नेचल लोक, दुनिया के इस मकामे कर सिद्क करनी खर्च बांधो, लाग रहो नामे राओ जोगी ता आसन कर बहे मुल्ला बहे मकाम, पंडित बखाने पोथियां सिद्ध बहे देव स्थान, सुर सिद्ध गण गंधर्व मुनजन शेख पीर सलार, दर कूच कूचा कर गए अबरे पिचलन हार, सुल्तान खान मलूक उमरे कैगर कर कूच, कड़ी मोत के चलना दिल समझ तू कै पूछ, शब्दाह माए वखानिए विरला तंबूचे कोए, नानक वखाने बेनती जल तल मैल सोए, अल्ला लख अगम कादर करन हार करीम, सब दुनिया आमन जामनी मकाम एक रहीम, मकाम तिसनो आखिए जिस इस दे वेलेख, असमान धरती चल सी मकाम ओही एक, दिन रव चले निसस चले तारक लख पलोए, मकाम ओही एक है नानका सच बिगोए, महले पहले 17 अस्तपतियां श्री राग महला तीजा, कर पहला अस्तपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गुरमुख कृपा करे भगत की जय, बिन गुर भगत न होए आपे आप मलाए बूजे, ता निर्मल होवे कोए, हर जो सच्चा सच्ची बाणी शब्द मिलावा होए, भाई रे भगतहीन कहे जग आया पूरे गुर की सेवन कीती, बिरता जन्म गवाया राओ आपे हर जग जीवन दाता, आपे बख्श मिलाए जी जनते क्या विचारे, क्या को आख सुनाए, गुरमुख आपे देव डियाई आपे सेव कराए, देख कटांब मोए लबाना चलद्या नाल न जाई, सतगुर सेव गुण दान पाया तिसकी कीम न पाई, प्रभ सखा हर जियो मेरा अंत होए सिखाई, पियड़े जग जीवन दाता मनमुख पत गवाई, मिन सतगुर को मग न जाने अंधे ठोर न काई, हर सुख दाता मन नहीं उस्या अंत गया पछताई, पियड़े जग जीवन दाता गुरमत मन वसाया, आंदन भगत करे दिन राती हमें मोह चकाया, जिस्यो राता तै सो होवे सच्चे सच समाया, आपे नदर करे पौलाए गुर शब्दी विचार, सतगुर सेविये सहज उपजे हमें तृष्णा मार, हर गुण दाता सत मन वसी सच रखिया उर तार, प्रभ मेरा सदा निर्मला मन निर्मल पाया जाए, नाम निदान हर मन वसी होमे दुख सब जाए, सतगुर शब्द सुनाया हो सत बलिहारे जाओ, अपने मन चित कहे कहे बिन गुर आप न जाए, हर ज्यो भगत विशाल सुख दाता कर कृपा मन वसाई, नानक सोभा सूरत दे प्रभ आपे गुरमुख दे वडियाई, श्री राग महला तीजा होमे कर्म कमाव दे जम डांड लगे तिन आए, जे सतगुर सेवन से उबरे हर स्थिति लिवलाए,
मन रे गुरमुख नाम त्याए, तोर पूर्व करते लिखिया तेरे गुरमत नाम समाए राव। विन सतगुर प्रतीत नावी, नाम न लागो पाओ, सुपने सुख न पावे, दुख में सवे समाए। जी हर हर कीजे बहुत लोची गै, कीर्तन मेटिया जाए। हर का पाना भक्ति मन्या, से भगत पए दर थाए। गुर शब्द दड़ावे रंग स्यों, बिन कृपा लिया न जाए। जेसो अमृत नीरी है, पी बेख फल लागे ताए। से जन सच्चे निर्मल है, जन सतगुर नाल प्यार। सतगुर का पाना कमावंदे, बिखोमे तज विकार। मन अटकते उपाय न छूटिए, सिमरत शास्त्र सोधो जाए। मिल संगत साधु उभरे, गुर का शब्द कमाए। हर का नाम निदान है, जिस अंत न पारा वार। गुरमुख से ही सोंदे, जिन कृपा करे करतार। नानक दाता एक है, दूजा और न कोए। गुर प्रसादी पाई है, कर्म प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा, पंखी बिरख सुहावड़ा। सच चुगे गुर पाए, हर रस पीवे सहज रहे। उडे न आवे जाए, निज कर वासा पाया। हर हर नाम समाए, मन रे गुर की कार कमाए। गुर कह पाने जे चले, ता अंधन राचे हर नाए राव। पंखी बिरख सुहावड़े, उडे चौ दिस जाए। जेता उड्डे दुख कने, नेता जेते बिल्लाए। बिन गुर मैल न जापई, ना अमृत फल पाए। गुरमुख ब्रह्म हरियावला, साचे सहज सबाए। साखा तीन नवारिया, एक शब्द लिवलाए। अमृत फल हर एक है, आपे देखवाए। मनमुख उबे सुख गए, ना फल तिन्ना श्याओ। तिन्ना पास न बैसिए, उन्ना करन गिराओ। कटिए ते नित जालिए, उन्ना शब्द न नाओ। हुक्मे कर्म कमावने, पहिए किरत फराओ। हुक्मे दर्शन देखना, जय भेजे तै जाओ। हुक्मे हर हर मन वसे, हुक्मे सच समाओ। हुक्म न जाने बपड़े, भूले फिरे गवार। मन हट कर्म कमावंदे, नित नित होए खुवार। अंतर शांत न आवई, ना सच लगे प्यार। गुरमुखियां मोह सोने, गुर कै हित प्यार। सच्ची भगती सच रते, दर सच्चे सचियार। आए सी परवान है, सब कुल का करे उदार। सब नदरे कर्म कमावंदे, नदरे बाहर न कोए। जैसी नदर कर देखे सच्चा, तैसा ही को होए। नानक नाम वडियाईया, कर्म प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा, गुरमुख नाम त्याई है। मनमुख बूझ न पाए, गुरमुख सदा मुख उजले। हर वस्या मन आए, सहजे ही सुख पाई है। सहजे रहे समाए, पाई रे दासन दासा होए। गुर की सेवा गुर भगत है, विरला पाए कोई राव। सदा सुहाग सुहागनी, जय चले सतगुर पाए। सदा फिर ने चल पाई है, नाओ मरे न जाए। शब्द मिली न विछड़े, फिर के अंक समाए। हर निर्मल अति उजला, बिन गुर पाया न जाए। पाठ पढ़े ना बुझई, पेखी परम पलाए। गुरमती हर सदा पाया, रसना हर रसमाए। माया मोह चकाया, गुरमती सहज सबाए। बिन शब्दे जग दुखिया, फिर मनमुखा नु गई खाए। शब्दे नाम ते आई है, शब्दे सच समाए। माया भूले सिद्ध फिरे, समाद न लगे सबाए। तीने लोप प्यापत है, अधेकर ही लपटाए। बिन गुर मुक्त न पाई है, ना दुबता माया जाए। माया किसनो आखी है, क्या माया कर्म कमाए। दुख सुख ए जीव बद है,
ਹੋਮੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਭਰਮ ਨ ਚੁੱਕਈ, ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਮੇ ਜਾਏ, ਬਿਨ ਪ੍ਰੀਤੀ ਭਗਤ ਨ ਹੋਵਈ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਥਾਏ ਨ ਪਾਏ, ਸ਼ਬਦੇ ਹੋਮੇ ਮਾਰੀਏ, ਮਾਇਆ ਕਾ ਪਰਮ ਜਾਏ, ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਈਐ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਗੁਰ ਨ ਜਾਪਣੀ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਭਗਤ ਨ ਹੋਏ, ਭਗਤ ਵਿਚਲ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਸਹਿਜੇ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦੇ ਹਾਰਸ ਲਾਈਏ, ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨਾ, ਆਪੇ ਪਰਮ ਪਲਾਏ, ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਬੂਝੈ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ, ਚਾਨਣ ਕਰਮ ਵਸੇ ਮਨ ਆਏ, ਮਨ ਰੇ ਨਾਮ ਜਪੋ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਗੁਰਪੂਰਾ ਸਲਾਹੀਐ, ਸਹਿਜ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਰਾਓ, ਭਰਮ ਗਿਆ ਪੋਪਾ ਗਿਆ, ਹਰ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਈਐ, ਹਰ ਵਸੇ ਮਨ ਆਏ, ਘਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਸਮਾਈਐ, ਜਮਕਾਲ ਨ ਸਕੇ ਖਾਏ, ਨਾਮਾ ਸ਼ਿੰਬਾ ਕਬੀਰ ਜੁਲਾਹਾ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਗਤ ਪਾਈ, ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਬੇਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਨੇ, ਹੋਮੇ ਜਾਤ ਗਵਾਈ, ਸੁਰ ਨਰ ਤਿਨ ਕੀ ਬਾਣੀ ਗਾਵੇ, ਕੋਏ ਨ ਮਿਟੇ ਭਾਈ, ਦੈਤ ਪੁੱਤ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਿਛ ਸੰਜਮ, ਨਾ ਪੜੇ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਨ ਜਾਣੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵਾ, ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਵਖਾਣੇ, ਏਕੋ ਪੜੇ ਏਕੋ ਨਾਉ, ਬੂਜੇ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣੇ, ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋਗੀ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਪਰਮ ਪੁਲਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਤਾਂ ਗਤ ਮਿਤ ਪਾਵੇ, ਹਰ ਸਿਉ ਮਨ ਵਸਾਏ, ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਗੇ, ਆਵਨ ਜਾਣ ਰਾਏ, ਪੰਡਤ ਪੜ ਪੜ ਵਾਦ ਵਖਾਣੇ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਪਰਮ ਪਲਾਏ, ਲੱਖ ਚੁਰਾਸੀ ਫੇਰ ਪਿਆ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਮੁਕਤ ਨ ਪਾਏ, ਜਾਂ ਨਾਓ ਚੇਤੇ ਤਾਂ ਗਤ ਪਾਏ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਨਾਮ ਹਰ ਉਪਜੇ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੁਭਾਏ, ਮੰਤਨ ਅਰਪੀ ਆਪ ਗਵਾਈ, ਚੱਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ, ਸਤ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਵਿਟੋਂ ਜੇ ਹਰ ਸੇਤੀ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਹਮ ਜੁਬਿੰਦੇ, ਹਰ ਸੇਤੀ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਪ੍ਰਭ ਨਿਕਟਵ ਸੇ ਸਭਨਾ ਕਟੇ ਅੰਤਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲੇ ਜਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸਹਿਜੇ ਨੂੰ ਸਭ ਲੋਚਦੀ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਨ ਜਾਏ, ਪੜ ਪੜ ਪੰਡਤ ਜੋਧ ਕੀ ਥੱਕੇ, ਭੇਖੀ ਭਰਮ ਪਲਾਏ, ਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸਹਿਜ ਪਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਰਜਾਏ, ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਸਹਿਜ ਨ ਹੋਏ, ਸ਼ਬਦੇ ਹੀ ਤੇ ਸਹਿਜ ਉਪਜੇ, ਹਰ ਪਾਇਆ ਸੱਚ ਸੋਏ ਰਾਓ, ਸਹਿਜੇ ਗਾਵਿਆ ਥਾਏ ਪਵੇ, ਬਿਨ ਸਹਿਜੇ ਕਥਨੀ ਬਾਤ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਭਗਤੀ ਉਪਜੈ, ਸਹਿਜ ਪਿਆਰ ਬਰਾਗ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਤੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ, ਬਿਨ ਸਹਿਜੇ ਜੀਵਨ ਬਾਦ, ਸਹਿਜ ਸਲਾਈ ਸਦਾ ਸਦਾ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਦ ਲਗਾਏ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਗੁਣੀ ਉਚਰੇ, ਭਗਤ ਕਰੇ ਲਿਵਲਾਏ, ਸ਼ਬਦੇ ਹੀ ਹਰ ਮਨ ਵਸੇ, ਰਸਨਾ ਹਰ ਰਸ ਖਾਏ, ਸਹਿਜੇ ਕਾਲ ਵਡਾਰਿਆ, ਸੱਚ ਸਰਨਾਈ ਪਾਏ, ਸਹਿਜੇ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਸੱਚੀ ਕਾਰ ਕਮਾਏ, ਸੇ ਵਡ ਭਾਗੀ ਜਿਨ ਪਾਇਆ, ਸਹਿਜੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਨ ਉਪਜੇ, ਮਾਇਆ ਦੂਜੇ ਪਾਏ, ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ, ਹੋਮੇ ਜਲੇ ਜਲਾਏ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਨਾ ਚੁੱਕਈ, ਫਿਰ ਫਿਰ ਆਵੇ ਜਾਏ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਨ ਪਾਈਐ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਭਰਮ ਪਲਾਏ, ਪੜੀਏ ਗੁਣੀਏ ਕਿਆ ਕਥੀਏ, ਜੋ ਮੁੱਢੋਂ ਕੁੱਤਾ ਜਾਏ, ਚੌਥੇ ਪਦ ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਪੱਲੇ ਪਾਏ, ਨਿਰਗੁਣ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਸਹਿਜੇ ਸੋਝੀ ਹੋਏ, ਗੁਣਵੰਤੀ ਸਲਾਇਆ, ਸੱਚੇ ਸੱਚੀ ਸੋਏ, ਭੁੱਲਿਆ ਸਹਿਜ ਮਿਲਾਏ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਏ, ਬਿਨ ਸਹਿਜੇ ਸਭ ਅੰਧ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਗੁਬਾਰ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੋਝੀ ਪਈ, ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਅਪਾਰ, ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਇਨ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਰਤਾਰ, ਸਹਿਜੇ ਅਦਿਸ਼ਟ ਪਛਾਣੀਐ, ਨਿਰਭਉ ਜੋਤ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ,
ज्योति ज्योत मला मनहार पूरे शब्द सलाई है जिसका अंत न पारावार ज्ञानिया का तन नाम है सहज करे व्यापार आंदन लाहर नाम लैन अखोट परे पंडार नानक तोट न आवई ये देवे देवनहार श्री राग महला तीजा सतगुर मिल गए फिर न पवे जन्म मरण दुख जाए पूरे शब्द सब सो जी होई हर नामे रहे समाए मन मेरे सतगुर स्यों चित लाए निर्मल नाम सदा नव तनो आप वसे मन आए राओ हर ज्यो राखो अपनी सरनाई ज्यो राखो त्यो रहना गुर कै शब्द जीवत मरे गुरमुख पव जल तरना वड्डे भाग नो पाई है गुरमत शब्द सुहाई आपे मन वसिया प्रभ करता सहजे रिया समाई इकना मन मुख शब्द न पावे बंधन बंद पवाया लख चौरासी फिर फिर आवे बिरथा जन्म गवाया भगता मन आनंद है सच्चे शब्द रंग राते आंदन गुण गावे सद निर्मल सहजे नाम समाते गुरमुख अमृत बाणी बोले सब आत्म राम पछाणी एको सेवन एक अराधै गुरमुख कथ कहानी सच्चा साहब सेवियै गुरमुख वसे मन आए सदा रंग राते सच स्यो अपनी कृपा करे मलाए आपे करे कराए आपे इकना सुत्या दे जगाए आपे मेल मलाएंदा नानक शब्द समाए श्री राग महला तीजा सतगुर सेविये मन निर्मला पए पवित्र शरीर माने आनंद सदा सुख पाया पेटिया गैर गभीर सच्ची संगत बैसना सच नाम मन तीर मन रे सतगुर सेवन संग सतगुर सेविये हर मन वसे लगे न मैल पतंग राओ सच्चे शब्द पति उपजे सच्चे सच्चा नाओ जिन्नी होमे मार पछाणिया हो तिन बलिहारे जाओ मनमुख सच न जाननी तिन ठौर न कतूताओ सच खाना सच पहनना सच्चे ही विचवास सदा सच्चा सलाना सच्चे शब्द निवास सब आत्म राम पछाणिया गुरमति निज करवास सच वेखन सच बोलना तन मन सच्चा होए सच्ची साखी उपदेश सच सच्चे सच्ची सोए जिन्नी सच विसारिया से दुखिए चले रोए सतगुर जिनी न सेवियो से कते आए संसार जमदर बद्दे मारिए कूक न सुने पुकार बिरता जन्म गवाया पर जमे वारो वार यो जग जलता देख कै भजबै सतगुर सरना सतगुर सच दड़ाया सदा सच संयम रहना सतगुर सच्चा है बोइता शब्दे पव जल तरना लख चौरासी फिर दे रहे बिन सतगुर मुक्त न होई पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके दूजे पाए पत खोई सतगुर शब्द सुनाया बिन सच्चे अवर न कोई जो सच्चे लाए सच लगे ने सच्ची कार करन तिन्ना निज कर वासा पाया सच्चे मैल रहन नानक भगत सुखिए सदा सच्चे नाम रचन श्री राग महला पंजवां जाको मुश्किल अत बने ढोई कोए न दे लागू होए दुश्मना साख विपज खले सबो पजे आसरा चुके सब असराओ चित आवे उस पार ब्रह्म लगे न तत्ती वाओ साहिब न तान्या का तान आए न जाई थिर सदा गुर शब्दी सच जान रहाओ जे को होवे दुबला नंग भुख की पीर दमड़ा पल्ले ना पवे ना को देवे तीर स्वार्थ स्वाओ को करे ना कछ होवे काज जिते आवे उस पार ब्रह्म ता नेचल होवे राज जाको चिंता बहुत बहुत देही व्यापे रोग गृहस्थ कुटंब पलेटिया कदे हरख कदे सोग गौण करे चौकुंट का कड़ी न बेसन सोए जिते आवे उस पार ब्रह्म तन मन शीतल होए काम क्रोध मोह वस किया
किरपन लोभ प्यार चारे किलब क्यों न्याग की हुए असर सिंगार पोथी गीतक वित केश कदे न करे तरन चित्यावे उस पार ब्रह्म ता निमक सिमरत तन शास्त्र सिमरत वेद चार मखांबर बिचरे तपे तपीसर जोगियां तीरथ गमन करे खटकर्मा ते दुगने पूजा करता ना हो रंग न लगी पार ब्रह्म सर पर नर के जाय राज मिलक सिखदारियां रस भोगन विस्तार बाग सुहावे सोने चले हुक्म अफार रंग तमाचे बहुबिधि चाय लाग रेहा चेतन आयो पार ब्रह्म ता सर्प की जून गया बहुत तनाड्य चारवंत शोभा निर्मल रीत मात पिता सुत पाईया साजन संग प्रीत नस्कर तरसकस बंद बंद स्यों ज्यो सगली कीत चेतन आयो पार ब्रह्म ता खड़ा रसा तल दीत काया रोग न चितर किश ना किश काढ़ा सोग मृतन आवी चेत तिस एनस भोगे भोग सब किश की तू अपना जिया न संक तरिया चेतन आयो पार ब्रह्म जम कंकर वस परिया कृपा करे जिस पार ब्रह्म होवे साधु संग ज्यो ज्यो ओ वधाई है त्यों त्यों हर स्यो रंग दो सिरिया का

पंजमा कर पंजमा जानो नहीं पावे कवन बाता मन खोज मार्ग रहाओ ध्यानी ध्यान लावे ज्ञानी ज्ञान कमावे।